जब जाऊं लाख जाने हो जब न जाने लाख जाने हो ना सीखे जाऊं लाख जाने ना वह सीखे जाने Ma langue à la santé. Allez, ma langue à la santé, voilà.

छोजू थी गा अच्छा गने छोजू थी गा अच्छा ओ लाल थी फे सही लाए गने छोजू थी गा अच्छा फोनो थी गा उन्हें देखियो ना